चरित्र गाऊं प्रभु जी तमारा अखंड सौभाग्य गणी अमारा इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी।

श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज।

प्रमुख जित मने मूल भूषु कहीं रे, कृपा करो मुझ ऊपरे। सुख निधि सहजानंद,